म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलौती र पुत्र गुमला माली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजु भाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: साथी हुनै रहेछ, माया जबरजस्ती खोसेर होइन, खुशी खुशी मन जितेरै पाइने रहेछ।
1: इन्टरनेट दुरुपयोग नगर्नु है।

नमस्कार रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम मैले में थपलो 7 MHz बाटो म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 अक्टूबर 4 तारीख आश्विन 18 गते आइतबार अष्टमी तिथि 3:47 मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

धर्म कुमार कैसर्य श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवश सुजन मनुन बढ़ाले पनी कृति उज्ज्वल सुत सहित का।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम नरबहादुर खड्का। मेरो घर कालिङचोक वडा नम्बर 9 कटुवा बजार कालिकाथान नरबहादुर खड्का 82 मेरो उमेर।

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांताबाई जी लगाए थे महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।

সাহেক বর্তন ছাইন ভিখ গারি খানছন রুখ মণি বর্তন তর পানি আশাই তীর মন লানছন বজনারায়ণ বজনারায়ণ বজনারায়ণ সজন হো जब तक धन को लाउँछ धारो तब तक सफले मान्छ पियारो वृद्ध हुँदा जब बल टुटी जाला बन्ला घरमा सबको हेला भजनारायण भजनारायण भजनारायण सजन हो कति मुरी छन् कति रङ्गिँदैछन् कति लटाका प्रेम हुँदैछन् तर छन् ज्ञान बिना सब अन्धा बुढीमै ठिक छ सबको धन्दा भजनारायण भजनारायण भजनारायण सजन हो गीता अलिकति जो पढी लिनेछन् अलिकति गङ्गा जल निलिदिनेछन् प्रभु

इतमिता सुतरा जना तना धना नारी गोठरा खेत पशु घर बारी सबई जाही का ताही रहने छन तिमी कनाए मले खैचिलिने छन भजनारायण भजनारायण भजनारायण सजन हो।

आमा का पौवा घर मेरो आले पूर्णा गाउँ हो। म टेक बहादुर सुवेडी 78 वर्ष को भई। म सैलुङ एफएम में एउटा सिलोक भरौं भनेर अनिखेर आको।